सोए अपने चलिताव करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आ मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी

नाना भेग करै एक रंग, नाना बिदकीनो विस्थार, प्रभ अविनाशी एकंकार, नाना चलित करे खिन माए, पूरे पूरन सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाए, अपनी कीमता पे पाई, सब कड़ तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगलाकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाई तिसे सफली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत जन जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोई, नाम जब ता की गत होए, आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत, जिसके सिरत सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जोत सभावै सो वर दिया, बिस्मन बिस्म भई बिस्माद, जिन बूझे तसाया स्वाद, प्रभ कै रंगराज जन रहे, गुर कै भजन पदार्थ लहे, ओए दाते दो काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लेवला।

एक अराध परास्त गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, नानके प्रभ बिनती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देव हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास वरा सास प्रभ तुम्हें त्यावो, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हरस पावे बिरला कोई, जिन चाख्या से जंत्र बताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै, चाहो साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगा सन दिन लिव लाग, वडभागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक के मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक के नो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इस पुनी सरदासा पूरी, राव रहया सद संग हजूरी, जिसका साथन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे खाल न भने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अग्न में रखे, गुरु प्रसाद कुबिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे, जन्म जन्म

का टूटा गढ़ गुरपुरै तते है बुझाया। प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आव जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाई तरियै संसार, बिन भगती तन हो सीशार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम।

जन्म मरण को कहां विनाशन, जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो के सोए, जब अवगत गोचर प्रभे का तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिद्र लगत को कीस, जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसै भूक अवंतर बतावे, करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व

अष्टपदि आप कथा आप सुनने हार आप है एक विस्तार जात सभाव ता सृष्ट उपाय अपने भाणे ले समाई तुम ते भिन्न ही किशोय अपन सू सब जगत बरोई जा को प्रभ जीवा बुझाई सच नाम सोई जन पाई सो समदर्शी तत कविता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राख कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे

अनकला लखे न जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा प्रभुर, अंतरगत जिस आव जनाए, नानक ते जन आ बुझाए।

मन मंग आप छोड़ बेनते करहो साध संग अगर सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक

जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नान कुदरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी जाय।

सुन रसना कहती, कर प्रसाद दया प्रभ धारी, नानक निभी खे पहमारी, प्रभ के उस्तद करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सहूत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण हुए, प्रधान पुरख प्रगट सब।

बड़ा डाटा एह गैर करीम दा बड़ा डाटा तख्तों लाके करू वैरान शाह तख्तों लाके करू वैरान शाह।

कोई ना किसे ही किरा। गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा। ऐथे बूझे सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। एक नजर कर वेखे सभी ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाइए। नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाइए। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाइए। एक नजर कर वेखे सभी ऊपर,

हास्त राथ अशो पवन तेज तणी भूमन चतुरंगा संग ना चालियो इन मह कछुए ऊठ सिधायो नांगा हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गये नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाये हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के

नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाइये। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री महला पंजवां, घर तीजा। एक ओंकार सत गुरु प्रसाद। कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे। ताकि निर्मल रीत धन वाहिगुरु साहब जी।

मारू महला पहला कर पहला। करनी कागद मान मसवाने बुरा भला दे लेख पे ज्यों ज्यों करत चलाए त्यों चली जाए तो गुण नाही अंत हरे। चेत चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो। जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगै नित फासें छूट समूड़े कवन गुणी। कां आयारण मन विच लोहा पंच अगन

होए। जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन ना होए। नानक सिर दे छुटिए मंतन साचा सोए। मारू महला पहला जोगी जुगत नाम निर्मायल ताके मैल न राती। प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती। गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती। जातो भीतर महल बुलावे पूछो बात निरंती रहाओ। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इश नाना हर गुण पूजे पाती। एको नाम एक नारायण त्रिभवन एका ज्योति। जेवा डंडी एक अट शाबा तोलो नाम अजाची। एको हाट शाह सबना सिर वण जा रे एक भांति।

बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहो। बुरा भला किछ आपस ते जानिया ए सकल विकारा ए फरमाया खसम का हुआ वरते ए संसारा। इंद्री धात सबल कहित है इंद्री किस ते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई। गौर प्रसादी एक लिव लागी दुबधा तदे बिनासी जो तिस पाण सो सत कर्मान्या काटी जम की फांसी। भणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूका मन अभिमाना तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की शरणा मारू माला तीजा। आवण जाना ना थी है निज करवा सा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर के शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहा हो। एथे नावो भुलिया फिर हाथ किथाउ ना पाए जोने साब पवाईयन बिष्टा माए समाए वड भागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए अणदन सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेटे बिडाणी।

पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मुख द्वार। जति सदा वह जुगत न जाने छड बहे घर बार। सब को पूरा आपे हुए घाट न कोई आखे। पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापी।

0: तेरा स्पोड़ी।
1: चक्कर लगे चाकरी चले किसमें पाए, हिम्मत सुनों के लिए वो जब डूना खाए। किसमें करे बराबरी फिर क्या तंद्र पाए, वो जो गोया अगला मैं मैं बना खाए। जिस दत्ता खाओ ना जिसके सबास नाल मतली नल किसम चली अरदास।

संजोगी अंत है को ना सहाई, मुकत माल कनक लाल हीरा, मान रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदा, ता मैं संतोख ना पाया। हास्त राथ अशोपवन तेज, तनी भूमन चतुरंगा, संग ना चालियो इन मैं कछु है, ऊठ सधायो नांगा। हर के संत प्रे प्रीतम प्राप के,

जुगो जुग अटल, शतर चवर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे सन्मानयोग सत्कारयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब गुरुदेव दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुर की अमृतमयी बाणी आसा की वार दे कीर्तन, मेरे तो पहलां गुरु घर के रागी सिंघां पासों सरवण कर रहे सी, उपरंत सत्कारयोग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास करके जो अज दा पावन पवित्र मुखवाक है वो आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो आओ साध संगत जी पावन मुखवाक दी विचार नूं आरंभण तों पहलां सतगुरां वल्लों बख्शी होई फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन राग जैतसरी विच पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज की रचना तो उच्चारण किया होया, गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 700 दे उत्ते सुभायमान है। शब्द का सिरलेख है जैत श्री महला पंजवां, जैत श्री राग विच पंजवें शरीर, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का यह वाक घर तीजा तीजे घर विच इनू गाउण दी तगीद है ते महाराज ने रहाओ वाली पंक्ति विच विचार अंकित कीते ने। पहला सतगुर ने मंगल दर्ज कीता, एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओ अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, सदीवी होंद वाला है, अपनी कुदरत दे विच एक रस व्याप रहा है ते गुरु की कृपा द्वारा ओदी सोझी समझ ओदा अनुभव जिहड़ा है ओ सानू प्राप्त हुंदा है। तो महाराज कहिंदे ने कोई जाण लवे भी संसार दे विच ओदा सच्चा मित्र किहड़ा है, जिन्हें इस चीज़ नूं जाण लिया ओदे उत्ते फिर वाहिगुरु कृपा करदा है, वो इस बिध नूं जीवन जिउण दी बिध जाणी के जीवन जिउण दी जिहड़ी जुगत है उहनूं बुझ लैंदा है ते ओदी जिहड़ी रीत है, रीत दा अर्थ हुंदा है जी परंपरा, जीवन जिउण दा ढंग, महाराज कहिंदे ने वो निर्मल हो जाती है। निर्मल दा अर्थ हुंदा है मल तों रहत हो जाणा। तो सतगुर ने बख्शिश कीती कोई जानै कोई जान लवे कवन ईहां, इस संसार दे विच जग जगत दे विच मीत साडा सच्चा मित्र किहड़ा है, जिस होए कृपाल किहड़ा वो मित्र है जिहड़ा कृपा करदा है जिहड़ा सानू जीवन दी सोझी ते समझ दिंदा है, सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। निर्मल दा अर्थ हुंदा है जिहड़ी रीत जिहड़ी जीवन दी जुगत मैल तों रहत होवे, कोई ऐसा मित्र जिहड़ा साडे अंदर दी मैल कढ दवे जिहड़ा सानू पवित्र बना दवे। अजे सतगुर ने जदों साडे वर्गियां दी रीत दा जिक्र कीता है ना, तो महाराज एक बचन विच कहिंदे ने भी साकत की ऐसी है रीत, जिहड़ा रब नालों टुटिया है गुरु मित्र नालों टुटिया है ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਪਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਵੀ
ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਰ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਆਖੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮੰਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ, ਗਰਦ ਵਪ੍ਰੀਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਿਆ ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਸੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਸੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਬਦੇ ਬਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ, ਕਾਗਰ ਦਾ

आमयज्ञान अल्पमत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखू राखन हार दयाला

सगल संसार कियो बनजारा रहाउ, काम क्रोध दुए पये जगाती, मन तरंग बटवारा पंच

सत्संग जी, सतगुरु जी मेहर करन, इतनियां कीतियां हुईयां हाजरियां प्रवान करनियां जी, गुरु की बाणी दा कीर्तन करदे आं, सेवा करदे आं, तो अनेकां प्रकार दियां भुल्लां हो गईयां होणगियां। गुरु पातशाह बख्शन हारन, गुरु की संगत बख्शन हार है, सो असीस बख्शो। आने वाले समय च भी इसे तरह ही आके आप जी की सेवा करते रहिए। 20 तरीक तक आप जी के पास हाँ और आप जी के पास सेवा निभा रहे हाँ। अपनी असीस बख्शो। आने वाले समय च भी सतगुरु मेहर करन सबब बने, फिर आप जी की सेवा च हाजिर होइए। सो हुण मेरे तो बाद सत्कारयोग भाई साहब भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वाले अते उन्हां दा जथा आप जी ने ढाडी वारा अते गुरु इतिहास की विचार सरवण कराउणगे। दस रहे नूं बख्शो सीस बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

जापग सगल समग्री तुमर सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा का तुमरी गात अन्नी नानक दास सदा कुर तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्ब बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस जिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदा बताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारिया चौहान साहबजाद्या चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ह ने आप जी का नाम जपया वंड के छकिया देख चलाई तेग बाई देख सुन के अन डिट किया तिना प्यारिया सच्यारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तां नारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई बेअंत कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के साथ सवासा संग ने भाई आप जी दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिना शहीदां सिंघा सिंघणिया भजंगिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां अते सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चेतावै चेत्यावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे रियायत देख तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के पवित्र दर्शन शनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का रखा अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेवटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास अरदास बेनती है पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सरी विखे आप जी की पवित्र हजूरी अंदर दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी शब्द कीर्तन राही आप जी का जस गायन किया गया समुची सेवा निभाउंदिआं तो आप जी के अनजाण बच्चे जाण के होईआं भुल्लां माफ करनीआं अगे तो

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जब अलख बेवा। काम क्रोध किल विगुर काटे पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पए जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी। नानक ना वसिया जिस अंतर प्रवान ग्रस्त उदासा जियो। मांझ महला पंजवां सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा पंक्ति प्रगटाया। संत संग मिल हर हर जपिया बिनसे आलस रोगा जियो। जाग गरे नव निध है भाई तिस मिलिया जिस पुरब कमाई। ज्ञान त्यान पूर्ण परमेसर प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। खिन मैं था बू था बनहार आप कंती आप सारा। लेप नई जग जीवन दाते दर्शन डिठे लहन वे जोगा जियो। अंचल लाए सब सिठ तराई अपना नाउ आप जबाई। गुर बोहित पाया किरपा ते नानक तुरसन जोगा जियो। मांझ मान ला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा भली जाए। सोई सियाना सो बदवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सब परोए एकद धागै जिस लाए लए सो चरणी लागे। ऊंद कमल जिस हुए प्रगासा तिन सर्व निरंजन डीठा जियो। तेरी बहमा तू है जाने अपना आप तू आप शाने। हौ बलिहारी संतन तेरे जिन काम करो लो पीठा जियो। तू निरवैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरे कलमल। नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनस्या परम्पो धीठा जियो। मांझ महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगै तिसको मरते घड़ी न लागै। पार ब्रह्म जो सदै सेवै सो गुर मिल निचल कहना जी। प्रेम भगत जिस करते प्रेम भगत जिस कै मन लागी गुण गावे अंदर नित जागी। बहां पकड़ तिस स्वामी मिलै जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन वूठे विण परमेसर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ नानक सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय जिस सिमरत वर निचल पाई है। नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग मां जष्टपदियां महला पहला घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सबाए। सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पतिया वणिया। हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया। अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया। राव ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा। हो मैं कर कर जाए कनेड़ी कर अवगुण पछतावणिया। हुकम वछाणे सो हर गुण वखाणे गुर कै शब्द नाम निशाणे। सबना कादर लेखै सच्चै छूट स नाम सुहावणिया। मन मुख भूला ठौर न बाई जमदर बद्दा चोटा खाई। बिन नावै को संग ना साथी मुक्ति नाम ते आवणिया। सागत गूड़े सच न भावै दुविधा बाधा आवै जावै। लिखिया लेख न मिटै कोई गुरमुख मुक्त करावणिया। पीड़ै फिर जातो डाई झूठ वे शुनी रोवै ताई। अवगुण मुठी मैल न पाई अवगुण गुण बख्शावणिया।